आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें। 102.3

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवार

0: के चिकित्सा खर्च में लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: பலம் அது கொண்டிருப்பது திரை கானம்.

लास्य प्रियालय करी लज्जारम्भादि वन्दिता भवनामसुधा वृष्टिः पापारण्य दवानला दौर्भाग्य तूलवातूला जराध्वान्तर विप्रभा भाग्याधि चंद्रिका भक्त चित्त केकी घना घना रोग पर्वत दंभोणि मृत्युदारु कुठारिका महेश्वरी महाकाली महाग्रासा महाशना अपर्णा चंडिका चंडमुंडा सुर निषोधिनी क्षराक्षरात्मिका सर्वलोकेशी विश्वधारिणी त्रिवर्गदात्री सुभगा त्र्यंबका त्रिगुणात्मिका स्वर्गापवर्गदा शुद्धा जपा पुष्प निभाकृतिः ओजोवती द्युतिधरा यज्ञ रूपा प्रियव्रता दुराधाध्या दुरादर्शा पाटरी कुसुम प्रिया महती मेरुनिलया मंदार कुसुम प्रिया वीराराध्या विराट रूपा विरजा विश्वतो मुखी प्रत्यग्रूपा पराकाशा प्राणदा प्राण रूपिणी मार्तांड भैरवारा।